0: आफ्नै फिल्म टाइम चेक।
1: अहिले बिहानको 5 बजे हो।
2: टाइम चेक का साथमा ओम दयाल सुनसादी उद्योग तथा भाडा पसल, सिद्धिचरण नगरपालिका 11 बाल मन्दिर माथि पोखल ढुङ्गा।